0: Beer Ranger. सफा वाला फोटो छैन प्रतीक्षा? सफा वाला फोटो
1: को चिन्नु जानेको

0: 나루요?
1: सुशील बंदी नौ लाख रुपए की लाइसेंस तो बने जो मैं तारा ड्रेस से कालो है।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 6 बज्यो

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले रात को 8 बजे

0: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
1: देख देख देख, अरे और ये बाप रे बाप, स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू, जारी भी लिखवा ले का। अरे रे, ए, ए।
0: आ, जिगर पलट।